क्या बिन से बाप घने रे पैसी पैरे मुगे कोई तारे वायरी पैसी पैरे मुगे।

3100 रुपये हाजिर करते हैं। सच्चे पातशाह कृपा करना, विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणा विच निवास बख्शना, पिछे परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला रखनी। कुलवीर कौर लंगरा विच 1100 रुपये हाजिर करते हैं। सच्चे पातशाह कृपा करना, देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। सरदार गुरशान सिंह जी परिवार वालों 1100 रुपये हाजिर होए हैं। सच्चे पातशाह गुरशान सिंह जी की चढ़दी कला रखनी, विद्या दान देह अरोगता बख्शनी, चढ़दी कला रखनी। रपिंदर कौर परिवार वालों बेअंत माया हाजिर होई है, विद्या दान की बख्शीश, गुरसिखी जीवन देह अरोगता चढ़दी कला बख्शनी। माता गुरमीत कौर वालों लंगरां विच 1100 रुपये हाजिर होए हैं। सच्चे पातशाह कृपा करना, देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। सरदार अमरजीत सिंह जी लंगरां विच माया हाजिर कर दे पातशाह कृपा करना, देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला रखनी। सरदार सरबजीत सिंह जी देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। सरदार सुखजिंदर सिंह जी परिवार लंगरां विच 1100 रुपये हाजिर करते हैं। सच्चे पातशाह कृपा करना, देह अरोगता सुख शांति परिवार की चढ़दी कला बख्शनी। स्वर्गवासी सरदार बलदेव सिंह जी दे आत्मक शांति लई परिवार वालों लंगरां विच 500 रुपये हाजिर करते हैं। सच्चे पातशाह कृपा करना, विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणा विच निवास बख्शना, पिछे परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। सरदार जसबीर सिंह जी मायल लंगरां विच बेअंत माया हाजिर करदे पातशाह कृपा करना, परिवार विच सुख शांति देह अरोगता चढ़दी कला बख्शनी। दुकान दी चढ़दी कला, कमाइयां विच वाधे बख्शने, अंग संग सहाई होना चढ़दी कला रखनी। श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा सफल होने लई सरदार हरदीप सिंह हरबंस सिंह जी जमदार लंगरां विच बेअंत माया हाजिर करदे पातशाह कृपा करना, यात्रा सफली करनी, गुरसिखी जीवन अंग संग सहाई होना चढ़दी कला बख्शनी। सरदार देविंदरपाल सिंह जी चावला माजी सुपरडेंट गुरद्वारा बोर्ड जन्मदिन दे खुशियां वजों लंगरां विच बेअंत माया हाजिर करदे पातशाह कृपा करना, दीर्घ आयु दी दात देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। महताब कौर भगत सिंह जी रंधावा होने वाले बच्चे अते माता दी चढ़दी कला लई परिवार वालों बेअंत माया हाजिर हुई है, पातशाह कृपा करना, देह अरोगता तंदरुस्तियां बख्शना, चढ़दी कला रखनी, अंग संग सहाई होना। जी गरीब निवाज अमृत वेले तो लैके हुण तक आप जी दे हजूरी विच जिन्ना जिन्ना संगतां वल्लों नज़र भेट हाजिर होए हन। सच्चे

यात्रा सफली करनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जिन्हां जिन्हां संगतां वल्लों गुरु महाराज जी दे हजूरी विच भेटावां हाजर होईआं उन्हां संगतां नूं गुरु महाराज जी दे हजूरी विच सिरे भाव दी बख्शीश होवेगी। सिरे भाव लै के गुरु महाराज जी दीआं खुशियां प्राप्त करो जी।

पाल हरिय पाल हरिय छेद हरिय भेद हरिय जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पात हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय शोक हरिय भर।

नाचत फिरत मुर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमा शीतल न सूरस्त तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्यात ब्रह्मा से ना वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा रिशन के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित असुनी कुमार कित अंसावतार कित काल बस भय है। पीरे और पिकांबर कित गने ना परत एते भूम ही ते होए के फिर भूम ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिजदे करे अनेक तोप जी कपट भेष पोसती अनेक दानी वावत है। शीस को कह भयो मल्ल जो पे काटत अनेक दंड सोत न डंडोत अस डांग अथ तीस को कहा भयो रुकी जो पे डर रहे उर्द मुख मान तेना मूड ने हरायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा दसे मुंड छट कत मित्र पुत्र हूँ कि शोक सो आग को चरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सो कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोक सो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो नाचो ही करत।

देव जाज गंधर्व दुरा कहेंदु न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप गोर लाव है। अल्लाह अफेक सोई पुराण ओ कुरान हुई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केते नब पीछे अच पच को करेंगे भज केते कप्रत अच।

में तेज जैसे तेज लेन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग वासी किते मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत साहत किते भूम में गड़त किते सुअ पे जड़त किते दुख को बरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत किते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हर दानो वड़े बोध हर बोधक प्रबोध हर जापसी घास हर चंदन लगाए हर चुआचार पूज हर पाहन चढ़ाए हर लापसी गा हर गोरन मनाए हर मडी मट दीप हर भीतन।

न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासंगं भेदं न वर्मं सदेवं सदा सिद्ध विरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे।

सुखं कहूँ औखदि रोग के सोख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जछ गंधर विघ्न नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जोग तंग कहूँ भूम के भुगत मैं परम भुगतं।

कहूँ चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं

न जमा जे रचयं सर्व मकी नमका जय राग न रूप न रेख रुखं जय ताप न साप न शोक सुखं जय रोग न शोक न भोग भुयं जय खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितं जय रचयं छत्री छत्र छितं जय राग न रेख न रोग भणं जय द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंडहते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नव खंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु बिंद नगेन्द नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज से तज उद भुजंग किए देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जम्पह किन्नर जज

हे अंडज से तज जे रजन रज भूमा काश पताल जल अंगरज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एक

अंधूत भूत छूत मतंगन गाद ब्यादा नाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुवंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जब जंगर चे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण।

है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व सत है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानी है। नरंग रंग रूप है, नरोग राग रेख है, अदोग दाग दक है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अदेक सेक भेक है, सदीव विश्ववर्ण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववर्ण है, जिमी जमान के बिखे सदीव करम भरम है। अद्वेख है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई। न कर्म में न धर्म में न भ्रम में बताइए, गंज आद देव है कहो सु कैस पाइये। जिमी जमान के बिगे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है न

न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संग है, न जज है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साहु है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख।

न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत फेक है बली अरूप राग रंग है न द्वैग है न भेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिया भूम बिज है सदा।

यंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है, न आद है न गात है न व्या

तभी ग्रंथ सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि बिखिए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बिखिए अगाध आद देव किए नाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए सदैव सर्वलोक।

देव भेव ना जानही जे मरम वेद कतेब सनक औसन केस नंदन पावही ना सेव जय छ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार हे शिव सकर।

सर बठौर रहो बिराज राज राज प्रवीन जाछ गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैसनंगे बिखे विराजे शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भीर भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मद।

सेध नाम सहंस वर्ण है नेत पूर्ण होत सोद सोद हटे सफय सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पढ़त पढ़त थके महा

सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्र।

नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सभा कर कोट कष्ट दुरंत, गाय गाय थके गंधर्व नाच बसर पार, सोत सोत थके महासुर।

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अधम्बारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन।

दामनी दमंके के हर लंके आदतंके क्रूर कथे जय जय हो से रक्ता सुर खंडन शुंभ चक्र तन शुंभ मथे बार जिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे।

घंट का बिराजे रुणझुण बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंगो किल सुन लाजे किल बिग बाजे सुखूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दज मंथन रिझ सभय न भजे रूह रणंग जय जय होशी मासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर विदे धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होशी मासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खतरियान खतंगी अभय भंगी आद नंगी अगाध गते वृड़लाज।

अष्टायत बाहन बोलि बाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो श्री मैघा सुर मर्दन आद अनाद अगाध वृत्ते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्ध लगाहे दुख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय हो श्री मैघा सुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहिली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायत चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आदि प्रते डुक डुकी दमंगे भागव पंके हुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय हो से मखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दूच प्रचंडन खंड

रक्ता सुरमर्दन चंड चक्रदन दान वर्धन बिड़ाल बदे सरदार विवर खन दुर्जन धर खन तुल मरखन धर्म दुजे धूमराज विदुन संसूण सुन सन सोम।

धन भय अनंत तहु कहो जथा मत त्रण तंत। करता करी मकादर कृपाल भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जह नेत नेत सब भेद कहत। कई उच नीच कीनो बनाओ सब बार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूढ़ क्यों न सेवंत ताहे। कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पुलट सूरत सिजदा करंत।

करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जलधर प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा।

मुझे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पार। ऊर्धं बिरह सिद्धं स्वरूप बुद्धं पाल युद्धं अनूप जय रूप रेग नहीं रंग रागं छिज तेजन भिजदा। जल थल मही बंतन दुरंत जे नेत नेत निस्तिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार। कई कोट इंद्र जह बान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा आनंद जह नेत नेत निस दिन उचरंत। त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करें दिस संतो बारक नीमन गारे पच पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सब को प्रतपार है। पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं।

खंड अखंड प्रचंड वहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पद्मावत भेद कते भेदो चारे रोज ही राज बिलोकत राज रूख रुहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे अंग बेव न भेव लख्यो भ्रंस्यो भरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पद्मावत पाए। आद अनंत अगाध द्विख स्वभूत भवेख भवान अभय है अंत विहीन अनात्म आबाद अगाध होगा जिद अक्षय है। लोकन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ है दीन दयाल दया कल श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन देह विरक्त गेह अक्षय है। जान को देता जान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मापत ल है। रोगंते हर सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर देखन देकर पाप शंभू न भेटन पावे और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जश भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे भूम आकाश पताल रसातल जश भुजंग सब सिरन्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभावों को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो वेद कते बन भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान भेद निरपान सब है बजहारे भेद न पाय सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग ते

आसन कूट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे दीन दयाला काल बचे बिनंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कपित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल है दान के देवैया महामान के बटैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है जोध के जितैया विरोध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध दा के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल जावे गुर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे आरब के आरबी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी गोरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरण टाम गेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरिया क्या मचलत है रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेल बाब पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीज ने तिपति ध्याय दुख देह के दलत है जिने दोहे ध्यायो दिने पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सिम फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है पाइये न पार तिंज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हथि की पुकार पल पाछे पहुँचत दाहे जेठ की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महादीन किते व्यास से प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताहित अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पै अपार के बखानी है अद्व अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के कमानी है जंत्र हूँ न जात जाके बाप हूँ न मायता के पूरन प्रभा के सोचा के अनुमानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है नि जंत्र के खजानी है तेज हूँ कदर है के राजसी को सर है के शुद्धता को हर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ का रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध का भूत है के अच्छा अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनीमन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है जो कहूँ के जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ के घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई न पार पारावार हो गार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमाल गावे बसी हल विद्या पूर्वी न पार पावे सत्य नस है देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेव न तत्व अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाद भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ का जोग है धरैया दुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्र के कूल के हंसनी सी सिंहारू में ही रसी हो सनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के
फटक सी के दास कमाऊ गढ़ कांसी बुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमासी हिमल हर हार सी हलपा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे बोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदवाद कीरत तिहारी के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है बखरी कंधारी गोर कखरी कर दे जाचारी पौन गया हरी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र दया बिना

महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भिव आप नहीं बुध है जेती बरंत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखान जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा है बैठा काहूं सिमट भय संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट न है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छ सकै न कोई एक

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग वास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छुए सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद।

हर नाले, हर नाल रहो तो मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना, सब ना गलां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम

दोहरा नमस्कार श्री खड़ग को करो सहजराय पूर्ण करो ग्रंथ तुम करो सहाय त्रिपंकी छंद श्री अकाल जी की खग खंड बेहंड

0: जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे गया
1: नानक जिन करते कारण किया सो जाने कर तार पौड़ी बिन सतगुरु।

पौड़ी बिन सतगुर के नैन पायो, बिन सतगुर के नैन पाया। सतगुर विचाप रखियोन कर प्रगटाक सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुख दह दिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन

मेर शरीर का कृत्य कृतवा हो जुग जुग फेर बटाई है बुझताय सच ग्रंथ सो का त्रम ग्रथवा त्रै तीर्थ तक

जिन कर उपदेश के आनंद दिया इन मित्र जगत में हालिया खसम छोड़ तुझे लगे डूबे से मिट जा रहा सतगुरु है बोलता।